पढ़ाने के लिए उसने फोन करने शुरू किए। वो लड़का शुरू में उससे बात नहीं करता था क्योंकि एक तो उसका कजन था, दूसरे उम्र में काफी बड़ा था, मगर ये उसको मुसलसल फोन करती रही। जब वो उसको डांटता तो कहती, मैं सिर्फ आपसे बात करती हूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं। और ये बात बिल्कुल गलत थी। दोनों तकरीबन एक साल तक इसी तरह फोन पर बातें करते रहे। एक फैमिली के होने के बावजूद एक दूसरे के घरों में बहुत आना जाना नहीं था, इसलिए ये टेलीफोन की दोस्ती छुपी रही। अब इस लड़के के दिल में भी लड़की के लिए जज्बात थे और ये मामला सिर्फ बात करने की हद तक रहा। इन्हीं दिनों उस लड़के के भाई की शादी की बात चली और उसके भाई का रिश्ता इसी लड़की से तय हुआ। सब कुछ इतना जल्दी और अचानक हुआ कि वो लड़की इनकार न कर सकी, क्योंकि उसके घर वाले फैसला कर चुके थे और जिस वजह से वो इनकार कर रही थी वो वजह वो बता नहीं सकती थी। दूसरी तरफ लड़के की तरफ भी यही मामला था। उसको भाई की मंगनी का तब पता चला जब मामला तय हो चुके और अब इनकार नहीं हो सकता था। आज वो लड़की उसी लड़के की भाभी है। ये सारी बातें मुझे उसी लड़की ने सुनाई हैं। वो इतनी शर्मिंदा है अपनी इस गलती पर कि दिन रात का गिल्ट उसके अंदर है। उसके शौहर अच्छे हैं मगर दिन रात गिल्ट में रहती है कि वो उन्हें धोखा दे रही है। शादी से पहले इन्हीं के भाई से इन्वॉल्व रह चुकी है। इस लड़के का भी यही हाल है कि भाई से आंख नहीं मिला सकता। उसने अपनी पोस्टिंग दूसरे शहर करवा ली, बहुत कम घर जाता है। देखा जाए तो सारी जिंदगी उसके सर पर एहसास जुर्म की ये तलवार लटकती रहेगी जो उसको कभी खुश नहीं होने देगी। यानी गलत काम करने का नतीजा कभी अच्छा नहीं हो सकता। आप कीकर बो के आम कैसे ले सकते हैं? गलत काम करेंगे तो किसी न किसी वक्त उसका खमियाजा किसी शक्ल में तो सामने आएगा। अगर दुनिया वालों से वो ऐब छुपा भी रहे तो जो अंदर का जमीर है वो ऐसे कचोके लगाता है कि इंसान को चैन नहीं लेने देता। इसलिए कभी भी अपने आप को छोटी मोटी तावीलों से मुतमईन करके ऐसे गलत काम में मत उलझाएं। इंटरनेट के बारे में किसी ने पूछा था कि उस पर चैट और फिर उसके नतीजे में शादी और ताल्लुकात जो है वो कैसे हैं। तो यहाँ किसी ने एक अखबार की कटिंग भेजी है जिसमें एक वाकया दर्ज है, आप भी सुन लीजिए। लिखते हैं कि इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया की एक ऐसी तफरीही पेशकश है कि जिससे आज की नस्ल कुछ जरूरत से ज्यादा ही लुत्फंदोज हो रही है। यही वजह है कि इससे मुतल्लिक कुछ ऐसे वाकयात भी सामने आ रहे हैं जो इंतहाई तकलीफ देह हैं। कुछ इसी हवाले से एक सबक आमूज वाकया। ये कहती है कि मैं कॉलेज से आकर तकरीबन हर रोज ही अपने जाती कंप्यूटर पर कुछ वक्त गुजारा करती, किसी काम की गर्ज से नहीं बल्कि नेट के इस्तेमाल की बुनियादी वजह मेरे वो लातादाद मुल्की और गैर मुल्की दोस्त थे जो मैंने चैटिंग के जरिए बना रखे थे। इन्हीं में से एक लड़का जिसका नाम विकी वकार था, शुरू शुरू में तो मुझे वक्त गुजारी का महज एक जरिया लगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं उसकी बातों से कुछ ऐसी मरूब हुई कि उसकी शख्सियत की गर्विदा होती चली गई। काफी रोज से मेरी उसकी बात नहीं हुई थी, न मेल न चैटिंग, मैं सख्त परेशान थी। और फिर एक दिन पैगाम मिला कि वो लाइन पर है। उसने पूछा कैसी हो, मैंने उसे अपना नाम सोहनी बताया। मैंने कहा तुम बताओ कहाँ थे इतने दिन। दरअसल मुझे मुलाजमत मिल गई इसलिए मसरूफियत बढ़ गई, बड़ी मुश्किल से फारिग वक्त मिला तो अब ऑफिस ही से चैट कर रहा हूँ, विकी ने जवाब दिया। वैसे असल काम तो मुझे अब करना है। वो क्या, मैंने पूछा तो हंसकर बोला अरे भाई तुम्हारे घर अपने घर वालों को भेजने का। इतनी जल्दी काहे किया, मुझे घबराहट होने लगी। और वैसे भी न तुमने मुझे देखा न मैंने तुम्हें, सिर्फ इंटरनेट के जरिए हम दोनों शादी जैसे बंधन में बंद कैसे जाएं, ये कैसे हो सकता है। मैंने खुलकर वजाहत की, तुम्हारी बात दुरुस्त है लेकिन जरूरी नहीं कि इंसान सिर्फ जाहिर से मुतासर हो, बल्कि मिजाज और फितरत में हम आहंगी भी इस रिश्ते में बन जाने के लिए काफी है। उसका जवाब ठोस था लेकिन मैंने फिर पसोपेश की, शादी सिर्फ एक लड़का लड़की नहीं बल्कि दोनों खानदानों का बंधन होता है। क्या मालूम जब हम मिलें तो कुछ ऐसे इख्तलाफात पैदा हो जाएं कि जिनके पेशे नजर हमें पीछे हटना पड़ जाए। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, इसीलिए मैं तुम्हारे और अपने घर वालों के माबेन सिर्फ जहनी हमांगी जांचने के लिए रिश्ता भेज रहा हूँ। अगर रिश्ते में कोई रुकावट हुई तो उसका पहले ही पता चल जाएगा और फिर हम जिस दौर में जी रहे हैं वो और किसी रिश्ते के न होने के बावजूद भी एक रिश्ते की हैसियत से जरूर कबूल कर लेगा और वो रिश्ता है हमारी दोस्ती का। उसने मुझे कायल करने के लिए तफसीली जवाब दिया, चलो यूं ही सही लेकिन मैं कल तक की मोहलत चाहती हूँ क्योंकि मैं जज्बात को बालाए ताक रखते हुए जाती तौर पर किसी से मशवरा करना चाहती हूँ। मैं अंदर से बहुत खुश लेकिन कुछ खौफ ज्यादा भी थी, सो मैंने एक रोज की मोहलत मांगी। ठीक है तो मैं कल तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा, कहकर उसने राब्ता मुनक़िते कर दिया। मेरा भाई हबीब काफी रोज से किसी लड़की से चैटिंग कर रहा था जिसका वो थोड़ा बहुत तस्करा भी किया करता था, लेकिन मैंने कुछ खास दिलचस्पी नहीं ली थी। मगर आज मुझे देखते ही वो चिल्ला उठा, तानिया आज आखिर मैंने उससे बात कर ही डाली,
جانتی ہو وہ بھی تقریباً راضی ہے، بس ذرا سی مہلت چاہتی ہے، شاید اپنے والدین کو میرے متعلق راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہو. ہیں بھیا، ویسے وہ دیکھنے میں کیسی ہے؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا. پتا نہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ بالکل میرے خوابوں کی رانی کی طرح ہی ہوگی. بھیا چہرہ تو نہیں دیکھا، لیکن اس کا اصلی نام بھی جانتے ہیں یا؟ میں نے پوچھا. اس کا نام سونی ہے، اور خدا کرے وہ بالکل اپنے نام کی طرح ہی سونی ہو. اور جانتی ہو وہ کتنی سمجھدار لڑکی ہے، بالکل جذباتی نہیں. کہتی ہے کہ میں ذاتی طور پر کسی سے مشورہ کر کے ہی کوئی قدم اٹھاؤں گی. بھیا تو جانے کیا کیا بولتے رہے، لیکن میرے لیے وہ الفاظ جلتی ہوئی چنگاریوں کے سوا کچھ نہ تھے. پتھر کی مورت بنی میں اپنے بھائی کو مسرت سے جھومتی دیکھتی رہی. مجھے تو خود بھی شرم آ رہی تھی، خدا یہ کیا ہو گیا. اور پھر میں نے اس منحوس نیٹ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رابطہ ختم کر دیا. سمجھ میں آ گیا واقعہ؟ جس سے چیٹ کر رہے ہیں آپ کو کیا معلوم وہ مسلمان بھی ہے یا نہیں، آپ کے رشتے کے قابل بھی ہے نہیں، یا وہ پہلے سے ہی شادی شدہ ہے، یا بچوں کا باپ ہے، یا کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کے اخلاق اور کردار کے بارے میں آپ کچھ بھی نہیں جانتے. ٹیلی فون پر ایٹ لیسٹ آواز سننے سے کسی کی عمر اور کسی اور چیز کا پتہ چل جاتا ہے، مگر نیٹ پہ تو کچھ بھی کسی کا نہیں جانا جا سکتا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی لڑکی لڑکا بن کر بات چیت کر رہی ہو. تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں بسا اوقات مشکلات پیدا کرتی ہیں. اور یہ مشکلات نہ بھی پیدا ہوں تو بات یہ ہے کہ وقت کا کتنا ضیاع ہے. صرف چیٹ اور گپ شپ اور وقت گزارنا، یہ سب چیزیں کسی بامقصد انسان کی زندگی میں تو نہیں ہو سکتی.

0: मोहम्मद इस्लाम जिंदा हो गए।
1: बुद्ध ने सबू कलमा पढ़ा,
0: बुद्ध ने सबू कलमा पढ़ा, बुद्ध ने सबू कलमा पढ़ा,
1: काफिर मुसलमान हो गए।
0: जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम।

0: इस्लाम जिंदा,
1: इस्लाम जिंदा हो गए।
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
2: सामेईन कराम, FM 92.9 पर हम रेडियो आपकी आवाज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: मुंडों के अंदर और हमारे रेस्पिरेटरी चले जाते हैं। तो बहुत ज्यादा को ये नहीं मालूम होता कि जो सिस्टम्स हैं वो कैसे चलनी होती हैं और कैसे चलने होते हैं। और आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं आपको शायद सब बता दूं, हम अभी एपिसोड में बैठे हुए हैं और हमारे जो आपकी बात सही है, बिल्डिंग बन रही है, बहुत कुछ बन रहा है और यही एक फैसला होता है और इसका होता है। पिछले साल 2025 का जो बजट हमने बनाया था ना, और जो जिसके बारे में था वो हमें फूलियां ना मिलती है जो होती हैं लैंड कम्युनल लैंड वाइनिंग से, तो हमारा बजट पूरा नहीं था ना। और मैं आपको यही कहूं कि अब इनकी जो कोशिश है कि यही लोग बड़ा सवाल कर रहे हैं कि हर जगह बिल्डिंग बन रही है, हर जगह ये स्ट्रक्चर बन रहा है, हर जगह क्या कहते हैं सड़कें खुली हुई हैं, पता नहीं बंदा जा रहा एक जगह होता है तो पता चलता है ये बंद है। ये इनकी ये पता नहीं ये भी पॉलिसी है और क्यों है ये मुझे नहीं पता। और मैं आपको ये कह सकता हूं कि 2000 अभी तक तो अब यही पता है कि 2027 के जो बजट्स हैं वो बेस्ट आए कि कमूनों के अभी तक तो क्या कह रहे हैं कि कोई इतना बड़ा मिसाल नजर नहीं आ रहा। मगर अब ये क्या कहते हैं ये जब गवर्नमेंट बैठेगी और कमूनों ने स्लैंस फाइनिंग और वैक्यूम्स के बजट बनाएगी तो फिर ही क्या कहते हैं हमें हमें पता चलेगा कि कितने पैसे हैं डब्बे में और कितने पैसे नहीं है और कितना क्या कहते हैं कमूनों के अंदर चेंजेस आते हैं
1: असल
0: क्योंकि
1: बात तो अदनान जो है वो डब्बे में कितने पैसे वाली बात है। अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करें, जो 2022 से शामस डैनियल निल्सन जो है वो वजीर थे, लेकिन अब जो सीना मुंक जो बने, लेकिन ऑन द होल वजारत अब भी जो है वो शामस के ही पास है। लेकिन अब कोपेनहेगन पूरा इधर बंद हुआ, वेस्टरबो इस तरफ जो है लोगों ने जो मेला लगा हुआ है, जो भी लगा हुआ है, तो आप अंदाज़ा करें कि लोगों के पास जगह नहीं है कि गाड़ी वो कहाँ पार करें, परेशानी में घूम रहे हैं। इस परेशानी का किसी को अंदाज़ा है?
0: दादा साहब देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि ये जो कोपेनहेगन का क्वेश्चंस है ना, मैंने ना एक मैंने बड़े अरसे से मैं खुद फंसा हूँ एक दिन तो मैं खुद फंसा हूँ एक दिन तो मैं खुद हैरान हुआ हूँ। तो फिर मैंने वो जो हमारा बैठा हुआ है सोशल डेमोक्रेट को मैंने उसे लिखा, मैंने कहा मैं तो समझता था कि ये आप लोगों ने कोई ना कोई हल निकालने की कोशिश करेंगे। कहते हैं हम नए बैठे हुए हैं अब कोशिश कर रहे हैं अब देखते हैं क्या बनता है। मैंने कहा ये तो नहीं ना कि क्या देख लें, मैंने कहा लोगों की मुसीबतें के लिए हम आप लोग इलेक्ट हुए हो कोई ना कोई तो हाल निकाल लो। तो कहता है ये मसला ये हुआ है कि हमने ये सोचा था कि हमने कम पार्किंग करनी है तो लोग ज्यादा बसों में और ज्यादा क्या कहते हैं ट्रेनों में घुसेंगे और ये चीजें घुसेंगे। तो मैंने उसे ये कहा, मैंने कहा जितनी देर तक वो चीज तो आपकी सही है कि आप गाड़ियां कम करना चाहते हो आप ये, मगर कोई ना कोई तो आप सोल्यूशन निकाल लेना। और ये एक मसला है कोपेनहेगन के अंदर, काफी मसला है और मैं होप करूंगा कि वहां पे जो जितने कैंडिडेट बैठे हुए हैं सिकंदर भाई
1: नहीं, आप
0: हो
1: ट्रांसपोर्ट के
0: कासम भाई
1: वजीर से भी तो बात करें ना। असल मसला तो ट्रांसपोर्ट के वजीर हैं, जो ना वजारतें ले लेते हैं तो इनको पता नहीं होता ट्रांसपोर्ट किस तरह चल रही है।
0: साहब, प्रॉब्लम ये होती है कि जो नेशनल है ना वो तो नेशनल का देखते हैं ना, लोकल जो होता है वो कमून के हवाले में होता है, वो कमून ने खुद क्या कहते हैं उसके सोल्यूशन ढूंढने होते हैं। और जब जितनी देर तक कमूनी सोल्यूशन नहीं ढूंढेगी उतनी देर तक क्या कहते हैं प्रॉब्लम्स पड़ती हैं और फिर प्रॉब्लम्स जो होती है ना बड़ बड़ी होती हैं। कोपेनहेगन में मसला ये है कि कोपेनहेगन के अंदर एक पार्टी है आपको भी पता है वो इंग्लिश लिस्ट वाले हैं, उनकी तो यही कोशिश है ना कि सब साइकिलों पे बसों में ट्रेनों में ये घुसे और वो मेजोरिटी पार्टी है जिसके पास सबसे ज्यादा क्या कहते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग आई थी पिछले इलेक्शन में भी 2025 में भी 2021 में भी बड़े स्ट्रॉन्ग आए थे वो, तो उनको जरा कन्विंस करना थोड़ा क्या कहते हैं होता है। मेरे ख्याल से अब शायद उनकी पॉलिसी थोड़ी बदलेगी, ये हमें लग रहा है कि वो अपनी क्या कहते हैं वेयर अपनी नेशनल पार्टी को देख के उस तरह से थोड़ा चलेंगे क्योंकि जिस तरह से वो उनने ये क्या कहते हैं नेशनल लेवल पे हैंडल किया ये नेगोशिएशन और चीजें लाए हैं तो उस तरह से उनको करना पड़ेगा। कोपेनहेगन में तो ये भी तो सोच रहे हैं ना कि अंडरग्राउंड को पार्किंग बनाई जाए तो क्या कहते हैं कुछ कुछ सोल्यूशन है, मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने कोपेनहेगन की इतना देखा नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं। मैंने वेस्टाइन को ही देखा है क्योंकि वेस्टाइन के ऊपर मेरा क्वेश्चन हुआ था जब मैं ये कुछ दफा ब्राउन भी मैंने

0: देखा मैचों पे और ग्लोव्स तो कुछ देखा, और मैंने पेमिसल में देखा, तो मैंने जब वहां पे आवाज उठाई तो मुझे पता चला कि कोई कोई प्लान इन्हें बनाए हुए हैं जो बाहर निकालेंगे कोपेनहेगन का। मैंने इसलिए मैं मजा चाहता, मैंने उनका कोई प्लान नहीं देखा। मैंने आप लोगों ने मुझसे कहा था तो मैंने एक लिखा था कि अपने बंदे को, उसने मुझे यही कहा कि हम इस पे काम कर रहे हैं और हम जब हम पता चलेगा कि कमोडिटी सिचुएशन कैसे है
1: जरा यहाँ सिस्टम
0: जी।
1: से काम होता था। अदनान, आपने आगे जिक्र किया कि स्मैरा जो है वो रेडिकल मिनिस्टर की ओलो ले लिया, उन्होंने जो है अपनी पार्लियामेंट की सीट जो है फिलहाल उन्होंने छोड़ी हुई है, वजारत रखी हुई है, लेकिन उनकी जगह कौन बैठा है?
0: उनकी जगह बैठेगा फर्स्ट सुप्लेंट जो उसका है, उसकी पार्टी का, वो बैठेगा वो उतनी देर तक। उसने ये इसलिए, और राजा साहब ये आइडिया भी बहुत अच्छा है क्योंकि इससे उनको ये होगा कि उनकी जो ग्रुपिंग है ना, ग्रुप जो उनके मेंबर्स हैं, वो फिर जरा पार्लियामेंट के अंदर उन पर प्रेशर नहीं इतना पड़ेगा। 10 सीटें जी मेरे ख्याल उनके पास, अब वो आए थे अंदर 9 या 10 सीटें थी, तो इस तरह से उन पर क्या कहते हैं फिर उनके जो तो काम का लोड होगा ना दूसरों पर इतना नहीं पड़ेगा। तो ऑब्वियसली वो क्या कहते हैं उनका आइडिया अच्छा है, और एक मोटी क्या कहते हैं एग्जाम्पल होती है कि बंदा बंदे को लालच नहीं होता। आप देखिए ना कि कल मैं आपको एक बात बताऊं व्यूअर्स को, जो जो यहाँ का फर्क है, हमारा जो फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर था मैथियस सिंह, जब वो अपना ओहदा दे के छोड़ के आया उधर बादशाह के पास, तो वो पैदल चल के गया अपने ऑफिस वापस, और पैदल चल के जब गया ऑफिस तो लोगों ने उससे सवाल पूछा कि तुम पैदल क्यों जा रहे हो। तो उसने एक जर्नलिस्ट को कहा, उसने कहा मैं आपको एक और सरप्राइज दूंगा सुबह, आपको बान की बात होगी कि वो सुबह ट्रेन से गया था अपने पार्लियामेंट में, वो ट्रेन में बैठ के गया,
1: इसलिए कि उसको
0: गाड़ी
1: गाड़ी
0: के
1: पे
0: अंदर
1: जाए तो उसको पार्किंग नहीं मिलती।
0: नहीं, पार्किंग की वजह से नहीं गया वो, पार्किंग तो उसको मिल जानी है क्योंकि वो तो उनकी अंडरग्राउंड पार्किंग के अंदर पार्लियामेंट के अंदर। वो कहता है मैं क्यों जाऊं, कहता है मुझे शौक है आम बंदे रहने का, और उसने वजारत भी इसलिए छोड़ी है कि वो अपना क्या कहते हैं वो लोकल काम करना चाहता है। वो कहता है जब मैं एक मिनिस्ट्री में बैठूंगा तो मैं खाली एक मिनिस्ट्री का काम करूंगा, जब मैं कोपे फॉर्म में बनूंगा तो मैं ज्यादा चीजों का काम करूंगा और मैं ज्यादा चीजों को समझ सकूंगा और
1: तो
0: ज्यादा
1: चलें,
0: मिसालों को
1: अदनान
0: क्या
1: आते हैं,
0: करूंगा।
1: शाह साहब भी सुन रहे हैं, आपसे सवाल करेंगे। तो एक जो समैरा बनी है वो बैकग्राउंड के हवाले से मिनिस्टर बन गई है, मेहनत की है, सभी उसकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन जो आपकी हमारी कम्युनिटी है 40,000 है या उससे ऊपर है, तो एक मेंबर भी पार्लियामेंट नहीं बनवा सके।
0: यार साहब देखिए, नहीं पार्लियामेंट जो मेंबर है ना, देखा जाए टेक्निकली देखा जाए ना, तो एब्यूसलोन का जो एब्यूसलोन से बंदा निकल गया है, रहता मैथियस यहाँ का ही है। मसला ये था कि यहाँ पे जो कैंडिडेट थे ना वो 6-7 खड़े हो जाते हैं, एक आम तो होती है, एक जजीरा बना होता है। जो मेन कैंडिडेट था ना हमारा यहाँ सोशल डेमोक्रेट का, वो नहीं निकल सका। जो गाड़ीखेर मिनिस्टर लाए थे वो जुहेर लाए थे, वो भी नहीं निकल सका। बीवी लाए थे एब्यूसलोन से, वो भी नहीं निकल सकी। अभी इस चीज की समझ खुद नहीं आई कि क्या कहते हैं कि इतने कैंडिडेट थे, दो हमारे एब्यूसलोन से कैंडिडेट खड़े हुए हैं, एक जुहेर खड़ा हुआ था, एक बीवी खड़ी हुई थी, वो दोनों नहीं आ सके एब्यूसलोन से। क्यों नहीं आ
1: नहीं
0: सके?
1: अदनान, इसमें ये वजह होती है कि ये जब कॉन्स्टिट्यूट करते हैं ना हम लोग पार्टी के, कि भाई फलानी पार्टी के साथ हम साम बात करेंगे, मसलन सोशल अपना रेडिकल ने सोशल डेमोक्रेट और दूसरों के साथ मिलके तो ये अपने बनाए हुए थे, तो फिर ये कहते हैं कि मंडेट जो होती है ना, अगर इनकी दो मंडेट पिछली दफा बनी थी तो इस दफा एक मंडेट, ये इनको इलेक्शन से पहले बात करनी चाहिए थी। असूली तौर पे डेमोक्रेसी इसको कहते हैं, इन्होंने इन्होंने वो मंडेट यहाँ की जो सीधा सेकंड मंडेट उसको दूसरे इलाके में तब्दील कर लिया और यहाँ से वो मंडेट जो है वो दूसरी पार्टी को मिल गई। ये चीजें जो है ना, ये सियासत में ऐसे ऐसी गेम प्ले वैसी होती है, क्योंकि ये जो सियासत है इसको मैं पीडीएम का नाम इसलिए दे रहा हूँ कि ये उस तरह की फेयर सियासत नहीं है जिस तरह की 2000 से पहले डेनमार्क में होती थी। यहाँ पे लोग जो थे बड़े बड़े लोग थे, बड़ी बड़ी उम्र के लोग थे और उनके पास तजर्बा था, उनके पास हर एक चीज। आज क्या है, आज लोगों के पास आईपैड है, कंप्यूटर है, तो उनके पास आप जाए। अभी आप ये बात कर रहे थे सुमेरा की, इससे बहुत अच्छी बात की है, इसलिए कि कि ये अपनी जॉब को जो मिनिस्ट्रीज को मिली है उसको बेहतर तरीके से समझ सकेगी, उसको बेहतर तरीके से टाइम दे सकेगी। पार्लियामेंट में तो वो पहले ही बैठी हुई थी, पार्लियामेंट को वो समझती थी, गुण लॉ को वो समझती थी, हर चीज को समझती थी। हमारे जो लोग हैं, हम लोग हमेशा उस जगह से इलेक्ट होने की कोशिश करते हैं जहां हमारे अपने लोग हैं। हम दूसरी नेशन से जो है वो वोट लेना अपनी तोहीन समझते हैं। और अगर ये पहले ही जो पार्टियों में लोग जाते हैं ये पहले ही समझ लें कि मेरे लिए कौन सा इलाका अच्छा है, तो ये उनको वहां से पार्टी जो है वो मैंडेट दे के आगे ला सकती है।
2: अदनान, इसमें
1: अच्छा
2: अगर आप
1: ये
2: वजाहत
1: जरूर
2: करते हैं,
1: सब।
2: साथ साथ साथ ये भी बता दें कि ये जो दो दो सीटें हम रख के बैठ जाते हैं, हमारा एक सीट पे हम काम नहीं करते, दो दो सीटें भी रख लेते हैं, फिर हमारे पास टाइम भी नहीं होता, मसरूफियात भी होती हैं, क्या हमारा सिर्फ ज़ाती जो चक्कर होता है मेंबर बनना, पार्लियामेंट का मेंबर बनना, कम्यून का मेंबर बनना, इसी तरह सियासत हम पाकिस्तानी सियासी पार्टियों की करते हैं तो डिमांड हम जो है डेंशों से करते हैं?
0: फैज साहब देखिए, जो शाह साहब ने बात की, शाह साहब ने एक बात सही की है। मैं आपको एक बात और बता दूं कि मेरा ये जो हम दो दो ऑर्डर लेना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। क्योंकि ये मैं आपको एक और बात बता दूं कि इस वक्त जो चेयरलैंड पे बैठे हुए हैं ना, उनको ये भी सोचना चाहिए कि पहले जो था ना चेयरलैंड, वो दो हिस्से में होती थी रैकियों, अब वो एक रैकियों में होगी, तो आप पे काम भी बहुत ज्यादा बर्डन हो जाएगा। और आप लोकल काउंसलर भी होंगे तो आपको ये मैनेज करना पड़ेगा कि ये हो सकता है कि सेम दिन दोनों तरफ मीटिंग आ जाए, तो फिर आपको प्रायोरिटी करनी पड़ जाती है कि कौन सी मीटिंग आप में जाएंगे और कौन सी मीटिंग में आप नहीं जाएंगे। तो सर इसलिए ये भी बहुत बंदे को क्या कहते हैं देखना होता है कि बंदे के पास किस तरह से बंदे ने करना है। हाँ, तो आप ये कर लें कि पहले आप कह लें ठीक है मैं 4 साल, ये मेरी राय है कि बंदा एक काउंसलर बन जाए, उसके बाद बंदा दूसरी देख लेता है, मगर ये अपनी अपनी पर्सनल राय है। बात ये होती है कि जिस तरह से ये हम बात कर रहे हैं कि ये जिस पहला मुसलमान जो हमारी कैंडिडेट बनी है, आप इसका बैकग्राउंड जाके देखिए ना कि इसने किस तरह से ये तजुबा लेके गए। शाह साहब की बात सही है कि इसने ग्राउंड वर्क किया है इसका, ये जब पहले पार्लियामेंट आने से पहले इसने ना जो
3: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर यह रेडियो आपकी आवाज है।

0: खुद सैदा हो गए
1: जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा हो गए जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा हो गए
0: बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा
1: बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा
0: काफिर मुसलमान हो गए
1: जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम